सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM

सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 एफएम। बिंदास। अब सुनिए

हैप्पीनेस फ्री में बट रही है, जितनी चाहो उतनी बटोर लो, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.

0: आपकी एक छोटी सी मुस्कुराहट किसी का दिन बना सकती है. सो स्प्रेड द हैप्पीनेस, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.
1: सिर्फ नंबर वन लोग सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ऑलिव 106.3 FM.

कभी खुद के कंधे पर हाथ रखकर कहा है कि क्या काम किया छोटे तूने? जनाब, खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।

0: हैप्पीनेस फ्री में बट रही है, जितनी चाहो उतनी बटोर लो, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.
1: हाय, मैं हूँ सारिका. आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो ऑलिव 106.3.
2: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क.

0: आपकी एक छोटी सी मुस्कुराहट किसी का दिन बना सकती है. सो स्प्रेड द हैप्पीनेस, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.
1: यू आर लिसनिंग टू कतार्स नंबर वन रेडियो स्टेशन. Radio Olive 106.3 FM. Geo Bindas.

0: गानों के साथ या हैप्पीनेस बट रही है क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस रेडियो ऑलिव योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी जियो बिंदास
1: Buying new glasses? Get up to 100% payback offer at Alfala Optics. Find this and more offers on Savify. Visit savify.co today.

0: हैप्पीनेस बांटोगे तभी तो बढ़ेगी,
1: क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.
2: Namaskar, my name is Ashish Vidyarthi and you're listening to Qatar's top most Hindi FM channel 106.3 Radio Olive Jio Bindas.

0: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
1: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है कूल सॉन्ग।

0: एक छोटी सी मुस्कुराहट किसी का दिन बना सकती है. सो स्प्रेड द हैप्पीनेस, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.
1: Party insurance may be a requirement, but with Bima, you get so much more. Get 24/7 roadside assistance with towing, recovery, tire change, fuel delivery, battery boost, and lockout support. Split your payment into 4 installments and stay claim-free to enjoy 7% cashback. Plus, get a replacement car for up to 3 days, a one-time airport drop-off, and vehicle inspection transportation. Choose Bima, third part of liability today. Call 800-786 or WhatsApp 740-5055 or visit bima.com.qa. बीमा फॉर योर पीस ऑफ माइंड. टीएनसी अप्लाई.
0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन, रेडियो ऑलिव 106.3

0: कभी खुद के कंधे पर हाथ रखकर कहा है कि क्या काम किया छोड़े तूने? जनाब, खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: मैं मोनी कपूर, रेडियो ऑलिव, जियो बिंदास।
2: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क।

गानों के साथ ये हैप्पीनेस बढ़ रही है क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.

हैप्पीनेस फ्री में बट रही है, जितनी चाहो उतनी बटोर लो, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।

0: लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है
1: इन एसोसिएशन विद

0: गुड मॉर्निंग, यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल एट 106.3 एफएम. मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम लाइफ मस्त है. सैटरडे की सुबह और आज लाइफ मस्त है में थोड़ा हंसेंगे, थोड़ा सोचेंगे और कुछ ऐसी बातें करेंगे जो शायद ना हम रोज महसूस तो करते हैं लेकिन बोलते नहीं है. सो आज वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है और मेंटल हेल्थ सुनते ही ना हम सबको लगता है जैसे बहुत सीरियस टॉपिक है, लेकिन जरा इसे दूसरे तरीके से सोचिए. हम अपने फ़ोन की बैटरी 20% होते ही चार्जर ढूंढने लग जाते हैं, कार की सर्विसिंग करवाते हैं, हेयर कट करवाते हैं, हेल्थ चेकअप करवाते हैं, लेकिन हमारा माइंड जब 5% बैटरी पर होता है तो हम कहते हैं कि नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सा बिजी हूँ. आज का दिन हमें यही याद दिलाता है कि मेंटल हेल्थ सिर्फ तब इम्पॉर्टेंट नहीं है जब कोई बड़ी परेशानी हो. कभी कभी बस थकान को पहचान लेना, किसी से बात कर लेना, थोड़ा अलग टाइम लेना या ये मान लेना कि आज मेरा दिन अच्छा नहीं है, ये भी मेंटल मेंटेनेंस ही है. और WHO के 2026 कैंपेन का जो फोकस है वो भी रियल एक्सपीरियंस और लोगों की आवाज़ों को सुनने पर है. सो आज का कोई बड़ा रिजोल्यूशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हम खुद से एक सवाल करते हैं कि मैं सच में कैसी हूँ. फाइन वाला ऑटोमेटिक आंसर नहीं चाहिए, थोड़ा रुक कर सोचिए और शायद आज किसी ऐसे इंसान से पूछिए जो जेन्युइनली ठीक है या नहीं है, क्योंकि कभी कभी एक जेन्युइन सवाल भी किसी के दिन को थोड़ा सा हल्का कर सकता है. बैठिए, बात कीजिए कोई कॉलीग, कोई फ्रेंड, कोई आपके आसपास आपका दोस्त. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, मैं हूँ मुस्कान, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास.
1: Ladies and gentlemen, this is London Airport. The local

0: आपको पता है आपका जो हैंडबैग है ना वो आपकी पर्सनालिटी बताता है। आपके बैग में इतना सब होता है पर क्यों? यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल ऑफ 106.3 FM, मैं हूं मुस्कान और शो का नाम यस ऑफ कोर्स लाइफ मस्त है। सो आज का टॉपिक सुनते ही कई सारे लोगों ने अपना बैग पकड़ लिया होगा। अब हैंडबैग एक ऐसी चीज है जिसकी कैपेसिटी पर मुझे आज तक रिसर्च करनी चाहिए। बैग छोटा है लेकिन अंदर इतनी सारे सामान, पूरा मेकअप, परफ्यूम, चार्जर, ईयरफोन, पता नहीं कौन कौन से बिल्स, और फिर अचानक एक पुराना बिल निकलता है। ये तो मैंने 2023 में खरीदा था और इट्स 2026। लेकिन हैंडबैग सिर्फ फैशन के लिए नहीं है। किसी के लिए पहला एक्सपेंसिव हैंडबैग एक अचीवमेंट होता है, किसी के लिए मम्मी का पुराना पर्स एक याद होता है, किसी के लिए वही बैग कॉलेज से लेकर फर्स्ट जॉब तक का साथ देता है। और फैशन की सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ पता है क्या है? कुछ चीज़ ट्रेंड बनती है और चली जाती है, लेकिन कुछ चीज़ें आपकी सिग्नेचर बन जाती है। अब देखिए, बैग कपड़ों की तरह तो है नहीं कि आप बस हर चीज़ के साथ मैचिंग बैग उठाओगे। सो आप एक बहुत सोच समझ के कलरफुल, एक बहुत ही स्मार्ट सा बैग खरीदते हो जो एटलीस्ट कुछ टाइम तक आपका साथ दे। सो आज मैं आपसे ये नहीं पूछूंगी कि आपका फेवरेट बैग कौन सा है। मेरा सवाल थोड़ा अलग है, आपके हैंडबैग में सबसे अजीब चीज़ क्या मिल सकती है? और प्लीज़ ऑनेस्ट आंसर हो, अगर किसी के बैग में स्क्रू ड्राइवर या बच्चों का कोई टॉय या फिर 3 महीने पुराना कोई च्युइंगम निकलता है तो भी आप अकेले नहीं हैं, बहुत सारे लोग हैं ऐसे। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 FM, नंबर है 3311063। स्टे ट्यून, जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या पर ये बात है। कूल सॉन्ग।

0: लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है
1: इन एसोसिएशन विद नेस्टो हाइपरमार्केट, नाउ ओपन एट ऑल

मूव का जवाब देना जरूरी नहीं होता। चेस का नाम सुनते ही ना कुछ लोगों को बस एक ही चीज याद आती है, मतलब आपको पता है जो हॉर्स है चेस में वो एल शेप में चलता है। लेकिन आज चेस डे पर हमें चेस खेलना नहीं है, लाइफ को चेस की तरह देखना है। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 FM, मैं हूं मुस्कान और शो का नाम यस ऑफ कोर्स लाइफ मस्त है। सो आप एक मूव करते हैं और सोचते हैं कि इसके बाद सामने वाला क्या करेगा। लाइफ में भी कितनी बार हम तुरंत रिएक्ट कर देते हैं, किसी ने कुछ कह दिया रिप्लाई, किसी ने मैसेज नहीं किया रिप्लाई, कोई डिसएग्री कर गया रिप्लाई। लेकिन कभी कभी सबसे इंटेलिजेंट मूव होता है अभी कुछ मत करो, थोड़ा सा वेट करो, सोचो फिर डिसाइड करो, क्योंकि हर सिचुएशन में जीतने के लिए सबसे तेज मूव नहीं सबसे सही मूव चाहिए। सो आज लाइफ मस्ते का सवाल है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन है जहां आपको लगता है कि काश मैंने उस टाइम पर थोड़ा सा रुक कर सोचा होता और शायद आज भी कोई मूव बाकी हो। गेम अभी खत्म नहीं हुआ है बॉस, वी हैव लॉट ऑफ क्वेश्चंस फॉर यू। सो यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 FM, मैं हूं मुस्कान, नंबर है 3311063। बाय द वे आपको चेस खेलना आता है या नहीं बताइएगा जरूर। स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

0: लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है
1: इन एसोसिएशन विद

सो बर्गर को ना बर्गर ही रहने दो, लेकिन थोड़ा एक्सपेरिमेंट करो। आज है वर्ल्ड प्लांट बेस्ड बर्गर डे। यू आर लिस्निंग रेडियो ऑल ओवर 106.3 FM, मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम लाइफ मस्त है। और आज इतने स्पेशल डेज हैं, मैंने सोचा क्यों ना इनके बारे में बात की जाए। सैटरडे भी है, आप एक्सपेरिमेंट कर भी सकते हो। और बर्गर का नाम सुनते ही मेरे दिमाग में एक ही सवाल आता है, फ्राइज साथ में है ना, लेकिन प्लांट बेस्ड बर्गर की कहानी इंटरेस्टिंग है। एक टाइम था जब वेजिटेरियन बर्गर का मतलब होता था दो बन के बीच में बस लेट्यूस डालकर दे देना और बोल दिया कि हेल्दी बर्गर। अब टेक्नोलॉजी और फूड साइंस ने चीज़ों को काफ़ी बदल दिया। प्लांट बेस्ड पैटीज को इस तरह से बनाया जा रहा है कि उनका टेक्सचर, बाइट, कुकिंग एक्सपीरियंस ट्रेडिशनल बर्गर के बहुत पास आ जाता है। लेकिन आज हम न्यूट्रिशनल लेक्चर नहीं लेने वाले हैं। मैं आपको बस ये बताती हूँ कि अगर आपको प्लांट बेस्ड बर्गर और रेगुलर बर्गर दोनों सामने मिले तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कौन सा बर्गर कौन सा है, पहचान भी नहीं पाओगे। बट आपके बर्गर का जो नॉन नेगोशिएबल चीज़ है, जैसे कि चीज़ हो गया, एक्स्ट्रा सॉस हो गई, क्रिस्पी फ्राइज हो गए, कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो आप अपने बर्गर में बिल्कुल नेगोशिएशन कर ही नहीं सकते उस चीज़ को लेके। सो वो क्या चीज़ है, या वो एक पर्सन जो बर्गर खाकर भी बोलता है कि बस एक ही बाइट तो खाया था, छोटा सा तो बर्गर था, मतलब हेल्थ को लेके कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं पर बर्गर देखने के बाद कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता। अगर आप भी उसी कैटेगरी में हो तो बताओ मुझे 3311063 पर। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल ऑफ स्टेट ट्यून्ड, जियो बिंदास।

एक लड़की को देखकर कभी आपने कहा है कि अरे यार ये तो बिल्कुल उसी का स्टाइल है, शायद वो हमेशा ही पर्ल्स पहनती है या बड़े बड़े सनग्लासेस या फिर उसके कुछ स्नीकर्स हैं जो उसके फेवरेट हैं और आप हमेशा देखते हैं। और मजेदार बात यह है कि सिग्नेचर स्टाइल के लिए आपको हर नया ट्रेंड फॉलो भी नहीं करना पड़ता। यू आर लिस्निंग रेडियो ऑल 106.3 FM, मैं हूं मुस्कान और शो का नाम लाइफ मस्त है। भाई अब फैशन की बात आती है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि फैशन में कुछ भी चल रहा हो लेकिन आपको आपका स्टाइल फॉलो करना चाहिए। इस टाइम पर बॉलीवुड में भी कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप देखते हो। आलिया भट्ट का फैशन अलग है, कियारा आडवाणी इज डूइंग समथिंग एल्स, करीना कपूर की बात करें तो वो कुछ अमेजिंग लेकर आती है कभी कभी। फैशन का एक बड़ा हिस्सा कपड़े नहीं कंसिस्टेंसी है, क्या आप पहनते हो और उससे ज़्यादा क्या इंटरेस्टिंग है, क्या आप बार बार उसे चुनते हो, क्योंकि वही चीज़ें धीरे धीरे आपकी पहचान बन जाती हैं। सो आज वार्डरोब खोलिए और ऑनेस्टली बताइए कि आपकी सिग्नेचर फैशन क्या है। कोई ईयर रिंग्स, कोई वाइट टी शर्ट, कोई ब्लैक आउटफिट, कोई स्नीकर्स या कुछ भी चलेगा, बस कंफर्टेबल होना चाहिए। सो यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल, मैं हूँ मुस्कान, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

0: सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM. अपनों को पैसे भेजना हुआ और भी आसान अलदार एक्सचेंज का वीजा डायरेक्ट सीधा आपके परिवार के बैंक अकाउंट में कतर में पहली बार.
1: हाय एवरीवन, मैं हूं अरमान मलिक.
2: अरमान मलिक
3: नंबर वन
1: 106.3 FM रेडियो ओलिव जियो बिंदास.
0: ओलिव सुनो रेडियो नेटवर्क कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क.

0: सो कभी ना एक किताब बिल्कुल सही समय पर मिलती है, एक छोटी सी कहानी सुनाती है। एक लड़की ने एक बुक खरीदी, कवर बहुत सुंदर था। उसने सोचा कि वीकेंड में पढ़ूंगी। वीकेंड आया, नहीं पढ़ी। फिर अगले वीकेंड, फिर एक महीने बाद, फिर एक दिन उसकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद उसका मन बहुत खराब था। उसी शाम उसने एक किताब उठाई और जो चैप्टर उसने खोला उसमें एग्जैक्टली वही बात थी जिसके बारे में वो उस दिन सोच रही थी। अब कोइंसिडेंस कहिए या फिर टाइमिंग, लेकिन शायद बुक की खूबसूरती यही है। हम किताब खरीदते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हम उसे पढ़ रहे हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है जैसे किताब हमें पढ़ रही है। यू नो, रिसर्च बताती है कि रीडिंग सिर्फ इंफॉर्मेशन लेने का काम नहीं करती, स्टोरीज हमारे इमोशंस और पर्सपेक्टिव्स को इंगेज कर सकती है। इसीलिए कुछ किताबें हम फिनिश कर देते हैं और कुछ हमारे साथ रह जाती हैं। सो आज किताबों की बहुत सारी बातें करने के लिए आ चुकी हूँ, आपको एक बहुत ही अच्छी किताब के बारे में बताऊंगी। आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए रेडियो ऑल 106.3 FM। मैं हूँ मुस्कान, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑल पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है कूल सॉन्ग।

0: लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है
1: इन एसोसिएशन विद

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव, और यहां पे जो है मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा। लाइफ में ना कभी कभी रिस्क लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो रिग्रेट की लिस्ट में जो है चीजें बढ़ती जाएंगी। सो बेसिकली लाइफ में दो चीजों की लिस्ट बहुत बनती है, एक रिग्रेट की लिस्ट और एक रिस्क की लिस्ट। ठीक है, अब रिस्क की लिस्ट में ऐसा होता है कि कुछ चीज हम करना चाहते हैं मगर नहीं करते क्योंकि हमें डर लगता है क्योंकि इसमें रिस्क ज्यादा है, और बाद में ये चीजें जो है रिग्रेट की लिस्ट में पहुंच जाती है। तो हमेशा ये कोशिश करनी होती है कि रिग्रेट का लिस्ट जितना छोटा हो सके उतना छोटा हो, रिस्क का लिस्ट जितना बढ़िया हो सके उतना बढ़िया हो, क्योंकि अगर रिस्क का लिस्ट बढ़िया है और हम आगे बहुत बढ़िया तरीके से जाते हैं तो फुलफिलमेंट लाइफ में बहुत आती है, और अगर किसी चीज़ को हमने कोशिश नहीं की तो फिर उसका रिग्रेट बहुत ज़्यादा चुभता है यार, कि यार मैं कर सकता था, मैंने नहीं किया करके, मैंने कोशिश तक नहीं की करके। करा, हार गया, कोई बात नहीं, होता रहता है। हार जीत तो भाई दुनिया का है हिस्सा यार, पहलू है लाइफ का, ये तो होता रहेगा, मगर कोशिश ना करना बहुत गंदा चुभता है। और यही बात याद दिलाते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।
1: बॉलीवुड की जान और उमराव जान, जिसके वजह से बॉलीवुड को हर किसी ने क्लासिक अंदाज में देखा, वो है रेखा।
2: इन आँखों की मस्ती के।
1: आज है रेखा जी का बर्थडे, इसीलिए रेडियो ऑलिव विश करता है उन्हें हैप्पी बर्थडे। आज सारा दिन सुनिए रेखा जी के गाने।

0: लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है
1: इन एसोसिएशन विद

आप सभी का फिर से एक और बार स्वागत है। आप सुन रहे हो रेडियो ऑलिव 106.3 FM। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव, और यहां पे हम आपको एक चीज याद दिलाना चाहेंगे, वो यही है कि अगर आप अपने ऑफिस टाइम के दौरान मस्ती करना चाहते हैं, फन करना चाहते हैं, बहुत बढ़िया तरीके से हंसना चाहते हैं, गेम्स खेलना चाहते हैं, रिचार्ज और रीएनर्जाइज होना चाहते हैं, तो फिर रजिस्टर कीजिए हैप्पीनेस लॉन्च के लिए। मैसेज कीजिए हमें 3311063 पर HL स्पेस अपने कंपनी का नाम, क्योंकि हैप्पीनेस लॉन्च में हम आपके वर्क प्लेस को विजिट करते हैं, फन करते हैं, गेम्स खेलते हैं, आपको रिचार्ज और रीएनर्जाइज करते हैं, और यही याद दिलाते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

आप सभी का फिर से एक और बार स्वागत है। आप सुन रहे हो रेडियो ऑलिव 106.3 FM। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। और आज यहां से जो है एक चीज आपके साथ मैं कन्वे करना चाहूंगा, एक्चुअली रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, और वो रिक्वेस्ट यही है कि आप एक संकल्प लीजिए, एक डिसीशन बना लीजिए कि मैं अपने लाइफ में अपने हैप्पीनेस का मालिक हूं। मुझे कैसे हैप्पी होना है वो मैं डिसाइड करूंगा करके। अब वो कैसे हैप्पी हो सकते हैं? देखिए, कभी कभी हमें लगता है कि अगर हम ये चीज़ खरीद ले तो हमें खुशी मिलेगी, वो चीज़ खरीद ले खुशी मिलेगी, फलाना ढिमकाना कर ले तो खुशी मिलेगी, यहाँ जाए तो खुशी मिलेगी। मगर कई बार ऐसा होता है, हम रियलाइज़ भी करते हैं कि वो सब करने में खुशी उतनी नहीं मिलती। हाँ, इनिशियली थोड़ा अच्छा लगता है, बट उसके बाद हाँ यही तो है करके एक फीलिंग आती है। तो क्या है मेरी खुशी? मेरी खुशी किस चीज़ में है? मुझे क्या करने में अच्छा लगता है? उस चीज़ को फिगर आउट कीजिए। अगर आप वो आपके करियर से एसोसिएटेड चीज़ है तो उसे और अच्छे से करिए, और वो आपके करियर से अलग चीज़ है तो एक पार्ट टाइम हॉबी की तरह करिए, मगर करिए ज़रूर। क्योंकि जब आप अपने को फुलफिल करने के लिए चीज़ें करते हैं तो आपकी लाइफ की मीनिंग बहुत बढ़िया हो जाती है। और दूसरी बात, दूसरा संकल्प वो ये है कि कई बार ना यार एक टेंडेंसी है हमारी कि हम कंप्लेंट कर देते हैं कि यार ये नहीं किया, ये नहीं हुआ, वो नहीं हो सकता था, ये नहीं हो सकता था करके। तो कोशिश कीजिए कि एक दिन के लिए कि किसी भी चीज़ के बारे में कंप्लेंट नहीं करना। कैसे हम चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं, वैसे कोशिश करते हैं। मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर की तरह साउंड करना नहीं चाहता, मैं बस बेसिकली यही बोलना चाहता हूँ कि जब हम कंप्लेंट करते हैं ना तो हमारी एनर्जी ड्रॉप हो जाती है, और वो एनर्जी जब ड्रॉप होती है तो फिर उसे रिफिल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो कंप्लेंट करना छोड़ना, क्या हम कर सकते हैं उसके बारे में फोकस करना, और जो हम नहीं कर सकते छोड़ना। तो ये एक क्लैरिटी जब हम अपने आप को दे देते हैं ना तो बहुत आसान हो जाती है ज़िंदगी। और ये बात बताते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं, जियो बिंदास।

0: सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: Free cash vouchers on diamond jewelry? Seriously, Mahi?
2: Yes, Bebo.
1: Sirf 25% pay karke gold price lock kar sakti hu?
2: Yes.
1: Catch kya hai?
2: Malabar gold and diamonds ke saath celebrations ko aur bhi khas banao. Diamond aur precious gem jewelry purchases par pao free cash vouchers. Aur sirf 25% pay karke gold rate ko block kar do.
1: I still can't believe it. No catch.
2: Catches sirf matches mein hote hai, Bebo. This is your festive gift from Malabar Gold and Diamonds.
3: नमस्कार मैं हूँ आर माधवन।
4: हाय दिस इज विपाशा बासु।
5: हाय आई एम राजकुमार राव।
6: हाय मैं हूँ प्रियंका चोपड़ा।
7: हाय दिस इज दिशा पार्डी।
3: आप सुन रहे हैं रेडियो ओनली 106.3 FM।

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव और यहां पे एक बहुत ही बढ़िया ट्रैवलिंग रिलेटेड फैक्ट जो है मैं आपको बताना चाहूंगा। क्या आपको पता है वर्ल्ड की सबसे विजिटेड कंट्री कौन सी है? वर्ल्ड की सबसे विजिटेड कंट्री है फ्रांस, जहां पे 102 मिलियन अराइवल्स जो हैं रिकॉर्ड हुए हैं। और सोच के देखिए कितने ज़्यादा लोग यार फ्रांस में जाते हैं करके, मतलब 102 मिलियन बहुत बहुत ही बड़ी संख्या है। सेकेंड नंबर पर है स्पेन, जहां पे 93.8-97 मिलियन अराइवल्स जो हैं रिकॉर्ड किए हैं। थर्ड नंबर पर है यूनाइटेड स्टेट्स, जो 72.4-78.5 मिलियन अराइवल्स जो हैं रिकॉर्ड कर चुका है। फोर्थ पोजिशन में है तुर्की, जहाँ पे 60.5 मिलियन अराइवल्स जो हैं रिकॉर्ड किए गए हैं। और फिफ्थ पोजीशन में इटली और चाइना है, जहां पे 57.7-64.9 मिलियन अराइवल्स जो हैं रिकॉर्ड किए गए हैं। और इनमें से कितनी कितनी जगह पे आप गए हैं या फिर आप जाना चाहेंगे मुझे बताइए 3311063 पर मैसेज करके। और यही बोलते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या पर ये बात है।

0: लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है
1: इन एसोसिएशन विद नेस्टो हाइपरमार्केट, नाउ ओपन एट ऑल पास.

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑल इन 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव, और यहां पे हम याद दिलाना चाहेंगे आपको कि अगर आपने अभी तक रेडियो ऑलिव के इंस्टाग्राम पेज को फॉलो नहीं किया तो सीधा जाइए इंस्टाग्राम पर, radioolive.qa सर्च कीजिए। वहां पे अगर फॉलो बटन दिख रहा है तो फॉलो कीजिए, और फॉलोइंग दिख रहा है तो बहुत बढ़िया। और आप हमारे कॉन्टेंट को चेकआउट कीजिए, पोस्ट को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कॉमेंट कीजिए, हमें सुनते हुए स्टोरी बनाकर डालिए इंस्टाग्राम पे, हमें टैग कीजिए, हम उस स्टोरी को रीशेयर करेंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, कई सारे बढ़िया बढ़िया डिजिटल कॉन्टेस्ट जो है हमारे पेज पर आते हैं, आप उसके साथ भी इंटरेक्ट कीजिए, आपको जीतने के मौके मिलेंगे, वो भी बढ़िया बढ़िया गिफ्ट्स। और यही बात बोलते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।
1: बॉलीवुड की जान और उमराव जान, जिसके वजह से बॉलीवुड को हर किसी ने क्लासिक अंदाज में देखा, वो है रेखा।
2: इन आँखों की मस्ती के।
1: आज है रेखा जी का बर्थडे, इसीलिए रेडियो ऑलिव विश करता है उन्हें हैप्पी बर्थडे। आज सारा दिन सुनिए रेखा जी के गाने।

0: लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है
1: इन एसोसिएशन विद

0: भाई धीरे धीरे टाटा बाबा गुड बाय करके निकलने का वक्त आ चुका है, क्योंकि यहाँ पे 5 बजने वाले हैं और 3 घंटे खत्म हो चुके हैं। मगर जाने से पहले यही दरख्वास्त है आपसे कि अब अपना ख्याल रखना, अपने खास लोगों का ख्याल रखना और हमें जरा दुआओं में याद रखना। फिर मिलेंगे चलते चलते, तब तक के लिए हंसते रहिए, खुश रहिए, खिलखिलाते रहिए और कहते रहिए जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर सॉन्ग ऑफ द आवर
2: ये गाना।
3: कत्ल करती हैं निगाहें कि दिल को खबर ना हो, जख्म देती है ऐसा कि दर्द का असर ना हो। हमने समझा था इश्क मोहब्बत को ही ख्याले दिल, लगता है डर बस इतना वो मेरा

अपने लव्ड वंस को पैसे भेजना हुआ और भी इजी। कतर में पहली बार अलदार एक्सचेंज लाया है वीजा डायरेक्ट, जिससे पैसे सीधा फैमिली के बैंक अकाउंट में, फास्ट, इजी और रिलायबल। विजिट कीजिए अलदार की 38 ब्रांचेस या डाउनलोड कीजिए अलदार एक्सचेंज ऐप नाउ।

0: ऑलिव रिचार्ज हर दोपहर 2 से 5 रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास।
1: This hour is brought to you by
2: Malabar Gold and Diamonds में सिर्फ 25% एडवांस देकर अपना गोल्ड प्राइस लॉक करें। विजिट योर नियरेस्ट Malabar Gold and Diamonds शोरूम नाउ।

0: आप सभी का स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत के साथ स्वागत है। यह रेडियो ऑलिव 106.3 FM, मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। और चलिए शुरू करते हैं ऑलिव रिचार्ज को, जहां पे एक साथ बैठकर गुफ्तगू करेंगे, गाने सुनाएंगे, गुनगुनाएंगे, ढेर सारे किस्से, खबरें, कहानियां शेयर करेंगे एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपके साथ वक्त बताएंगे। तो धीरे धीरे धीरे हम भी अपने बातों का सिलसिला शुरू करते हैं, आप भी अपने मैसेजेस का सिलसिला शुरू कीजिए। 3311063 है हमारा नंबर, तत्काल प्रभाव से तुरंत से पहले अभी के अभी कर दीजिए मैसेज। और यही बोलते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।
1: बॉलीवुड की जान और उमराव जान, जिसके वजह से बॉलीवुड को हर किसी ने क्लासिक अंदाज में देखा, वो है रेखा।
2: इन आँखों की मस्ती के।
1: आज है रेखा जी का बर्थडे, इसीलिए रेडियो ऑलिव विश करता है उन्हें हैप्पी बर्थडे। आज सारा दिन सुनिए रेखा जी के गाने।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM. अपनों को पैसे भेजना हुआ और भी आसान. अलदार एक्सचेंज का वीजा डायरेक्ट सीधा आपके परिवार के बैंक अकाउंट में. कतर में पहली बार.
1: हाय, मैं हूँ सुहाली खान एंड यू आर लिस्टिंग टू रेडियो ओलिव जियो बिंदास.
2: ओलिव सुनो रेडियो नेटवर्क कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क.
3: This hour is brought to you by
4: Malabar Gold and Diamonds में सिर्फ 25% advance देकर अपना gold price lock करें. Visit your nearest Malabar Gold and Diamonds showroom now.

0: आप सभी का फिर से एक और बार स्वागत है। आप सुन रहे हैं रेडियो ऑल ओवर 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव, और यहां पे हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चीज के बारे में जिसने सही में मुझे कई दफा जो है अचंभित किया है। जब भी ट्रैवल करते हैं या फिर इंडिया वापस जाते हैं तो एयरपोर्ट में अगर कभी कभी लेओवर मिल जाता है तो वो बहुत बढ़िया जगह है यार चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए। और साथ ही साथ एयरपोर्ट में ना वक्त के साथ रिश्ता थोड़ा बदल सा जाता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि वक्त मैटर नहीं करता। कभी कोई सुबह का खाना खा रहा है, कभी कोई अपना शिफ्ट एंड कर रहा है, कभी कोई कहीं और दूसरे डिफरेंट टाइम जोन से आ रहा है, कोई डिफरेंट टाइम जोन की ओर जा रहा है, तो पूरा वक्त का कॉन्सेप्ट जो है वहाँ पे अलग सा हो जाता है। और एक बहुत ही डिफरेंट फीलिंग है वहाँ पे, क्योंकि ऐसा लगता है कि कभी दुनिया बहुत ही कम समय के लिए से थम सी जाती है और वापस फिर से उड़ के अपने कामों पर लग जाती है। और कभी कभी ऐसे छोटे छोटे लेओवर्स में शायद दुनिया का या फिर संसार का बड़ा बड़ा सार जो है समझ में आ जाता है। और यही बात बताते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द ईयर।

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव, और यहां पे जो है एक आइडियल डे के बारे में बात करना चाहूंगा। एक आइडियल डे ऐसा होता है जहां पे हम सुबह एकदम आराम से उठते हैं, अलार्म सुन के एकदम से नहीं उठते, ठीक है, मतलब डर के नहीं उठते, अरे यार सुबह हो गई, अरे नहीं, आराम से आंखें खुलती हैं, सूरज की रोशनी ऐसे हम एक्सपीरियंस करते हैं, बाहर थोड़ी देर खड़े होते हैं, और सुबह अर्ली मॉर्निंग में जो एक स्टिलनेस होती है ना, वो बहुत ही बढ़िया है यार। उसको अगर हम एक्सपीरियंस कर पाते हैं तो बहुत मस्त चीज़ है, वो बहुत चीज़ों में क्लैरिटी मिल जाती है। तो सुबह के मॉर्निंग को ऐसे, मतलब सुबह के मॉर्निंग को कह रहा हूँ मैं सॉरी, मॉर्निंग के स्टिलनेस को हम थोड़ा ऐसे एक्सपीरियंस करते हैं, और धीरे धीरे धीरे आराम से अगर आप चाय पीते हैं तो चाय की जो उसकी लगाते हैं, दिन की एक बहुत ही अच्छी शुरुआत। उसके बाद ऑफिस में आते हैं, ऑफिस में भी आराम से आगे मेल देखते हैं, क्या क्या काम कर रहे हैं देखते हैं, अगर कोई गड़बड़ हो जाती है तो डरते नहीं है भाई, डरते नहीं है, बैठते एकदम मुस्कुराते हुए, क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, सॉल्व कैसे किया जा सकता है उसके बारे में सोचते हैं, सोल्यूशन ओरिएंटेड हो जाते हैं, प्रॉब्लम ओरिएंटेड नहीं, और उसके बाद धीरे धीरे धीरे अपना काम करते हैं, अपने आसपास के लोगों को हेल्प करते हैं मुस्कुराते हुए, फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ लाइफ जो है ऑफिस में अपना वक्त बिताते हैं। फिर जब वापस आते हैं तो सच बताएं तो स्ट्रेस उतना महसूस नहीं होगा, मगर बात यह है कि ये एक आइडियल डे है रियल डे से बहुत अलग है। रियल डे में अलार्म जब कान के नीचे बजता है तो भाई हमें लगता है कि भाई क्या हो गया करके, उठते हैं, दौड़ते हैं, ब्रश करते हैं, निकलते हैं, रेडी होते हैं, आते हैं ऑफिस में हड़बड़ाहट के साथ, फिर अगर कुछ गड़बड़ हो जाते हैं तो वहां पे फिर अलग दिक्कत आ जाती है, बीपी का ऊपर होना, नीचे हो जाना, बहुत सारी प्रॉब्लम्स। इन सब भाग दौड़ के बीच में कैसे ना कैसे काम करते हैं, खाना अगर खा पाते हैं तो खा लेते हैं, और फिर जब वापस जाने के लिए गाड़ी में बैठते हैं तो ऐसा लगता है कि पूरी जान ही निकल गई आज के दिन। कोई बात नहीं, मगर मैं कोशिश करूंगा बताने की कि कभी कभी थोड़ा धीरे धीरे चीज़ों को लीजिए, और यही बात बताते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ओलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। और कभी कभी, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि धीरे हो जाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, धीमा हो जाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सिमिलरली कभी कभी स्टेप बैक करना भी ठीक रहता है। स्टेप बैक करने का मतलब क्या है? कभी कभी चीज़ें बहुत ज़्यादा जो है होने लग जाती है, हम ओवरवेल्म से हो जाते हैं, तो एक कदम पीछे रखना, गहरी सांस लेना, चीज़ों के बारे में थोड़े क्लैरिटी के साथ सोचने की कोशिश करना जो है हमें बहुत आगे तक ले जा सकती है। कभी कभी हम क्या करते हैं, मोमेंट में सीधा रिएक्ट कर देते हैं, मगर रिस्पॉन्ड करने के लिए स्टेप बैक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम स्टेप बैक करते हैं तो हम एक ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से जो है चीज़ों को देखने की कोशिश करते हैं, और जब वैसे देखने की कोशिश करते हैं तो हमें क्लियर कट सॉल्यूशंस कभी कभी मिलने लग जाते हैं। कहाँ जाना है, कैसे जाना है, क्या करना है, उसके बारे में क्लैरिटी मिलने लग जाती है। तो समटाइम्स इट्स ओके टू स्टेप बैक सो दैट यू कैन लीप फॉरवर्ड। और यही बात बोलते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।
1: रेडियो ओलिव पर song of the hour।

0: ऑलिव रिचार्ज हर दोपहर 2 से 5 रेडियो ऑलिव 106.3 FM पर जियो बिंदास।
1: This hour is brought to you by
2: Malabar Gold and Diamonds में सिर्फ 25% advance देकर अपना gold price lock करें। Visit your nearest Malabar Gold and Diamonds showroom now.

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव, और यहां पे हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करना चाहते हैं। वो ये है कि क्या है इस्तेमाल इस बुद्धि का जो रील्स में खो रहा है, खो चुका है, या फिर रील्स के बिना जी नहीं पा रहा है। देखिए, आजकल के जमाने में अगर हमने एक बार इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब खोल के शॉर्ट्स देखना शुरू कर दिया तो फिर डूम स्क्रोलिंग का जो सिलसिला शुरू हो जाता है, क्या बताऊं मैं। उसके बाद क्या करना है, क्या नहीं करना है, वक्त क्या आ रहा है, कैसा चल रहा है सब कुछ आसपास, कुछ पता नहीं रहता। हम बस स्क्रोल करते जाते हैं, और जो हमारी बुद्धि है, जो इतनी बढ़िया बढ़िया चीजों को करने की जो क्षमता रखती है, वो कुछ नहीं कर पाती क्योंकि डोपामिन तो पूरा फ्राई हो चुका है ब्रेन का। भाई, जो डोपामिन रिसेप्शन सिस्टम है ब्रेन का, वो पूरा फ्राई हो चुका है। जिस तरीके से हमें काम करना चाहिए या फिर किस तरीके से हमें अपने आप को आगे बढ़ाना चाहिए, उन सब के बारे में हम जो है प्रॉपर तरीके से सोच नहीं पाते। ब्रेन फॉग होना शुरू हो जाता है, धीरे धीरे धीरे डिसीशन मेकिंग में भी प्रॉब्लम्स आने लग जाती है। तो वही सवाल आता है कि क्या इस्तेमाल है इस बुद्धि का जो रील्स में खो चुका हो। अगर इस बुद्धि का इस्तेमाल एक्चुअली करना है तो रील्स को हटा के रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, या फिर डूम स्क्रॉल ना करना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वो कैसे कर सकते हैं? देखिए, कभी कभी किसी किसी फोन में ना इनबिल्ट ऐसे ऐप आते हैं जहाँ पे आप टाइमर्स लगा सकते हैं अपने पर्टिकुलर ऐप्स में कि मैं इस ऐप को इस टाइम से इस टाइम तक ही यूज करूंगा, उसके बाद जो है वो लॉक हो जाता है। या फिर आप डिलिबरेटली जो है फोन हटा के रख सकते हैं, क्योंकि अगर फोन हाथ में रहेगा तो टेंडेंसी हो सकती है कि हम वहां पे जाए, तो फोन हटा के रख सकते हैं या फिर अपने कबूड के अंदर रख सकते हैं। अब देखिए, वर्क टाइम में तो करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि फोन जो है हाथ में रहना ही जरूरी होता है। बॉस ने कॉल किया, उठाया नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी, है ना, होता है ऐसा, कई बार होता है। तो फोन अगर हाथ में है तो आप ऐसे लिमिटर ऐप्स जो है यूज कर सकते हैं जो आपके पर्टिकुलर एप्लीकेशंस के यूज को जो है लिमिट कर देता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप अपने कलीग्स के साथ बैठे हैं तो फोन का इस्तेमाल ना करके आसपास जो है जो लोग बैठे हैं उनसे बात करने की कोशिश कीजिए। कभी कभी थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि कभी कभी मन नहीं करता यार, क्या यार इससे क्या बात करूं करके। अगर ऐसा है तो किताब उठा लीजिए, कोई किताब उठा लीजिए, थोड़ा सा ऐसे हल्का हल्का रीड करना शुरू कर दीजिए। इसके दो फायदे हैं, एक, रीड करोगे आपको बढ़िया लगेगा, आपकी हैबिट बनेगी, और बहुत बहुत सारे फायदे हैं रीडिंग के। दूसरा, जब पूरी दुनिया रील्स के आगे सर झुका के बैठी है और आप किताब पढ़ रहे हैं तो आपका अपील जो है अलग रहेगा, इतने कूल लगोगे ना आप, क्या ही बताओ मैं। और यही बात बताते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास। अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव, और यहां पे जो है मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा। लाइफ में ना कभी कभी रिस्क लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो रिग्रेट की लिस्ट में जो है चीजें बढ़ती जाएंगी। सो बेसिकली लाइफ में दो चीजों की लिस्ट बहुत बनती है, एक रिग्रेट की लिस्ट और एक रिस्क की लिस्ट। ठीक है, अब रिस्क की लिस्ट में ऐसा होता है कि कुछ चीज हम करना चाहते हैं मगर नहीं करते क्योंकि हमें डर लगता है क्योंकि इसमें रिस्क ज्यादा है, और बाद में ये चीज़ें जो है रिग्रेट की लिस्ट में पहुंच जाती है। तो हमेशा ये कोशिश करनी होती है कि रिग्रेट का लिस्ट जितना छोटा हो सके उतना छोटा हो, रिस्क का लिस्ट जितना बढ़िया हो सके उतना बढ़िया हो, क्योंकि अगर रिस्क का लिस्ट बढ़िया है और हम आगे बहुत बढ़िया तरीके से जाते हैं तो फुलफिलमेंट लाइफ में बहुत आती है, और अगर किसी चीज़ को हमने कोशिश नहीं की तो फिर उसका रिग्रेट बहुत ज़्यादा चुभता है यार, कि यार मैं कर सकता था, मैंने नहीं किया करके, मैंने कोशिश तक नहीं की करके। करा, हार गया, कोई बात नहीं, होता रहता है। हार जीत तो भाई दुनिया का है हिस्सा यार, पहलू है लाइफ का, ये तो होता रहेगा, मगर कोशिश ना करना बहुत गंदा चुभता है। और यही बात याद दिलाते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।
1: बॉलीवुड की जान और उमराव जान, जिसके वजह से बॉलीवुड को हर किसी ने क्लासिक अंदाज में देखा, वो है रेखा।
2: इन आँखों की मस्ती के।
1: आज है रेखा जी का बर्थडे, इसीलिए रेडियो ऑलिव विश करता है उन्हें हैप्पी बर्थडे। आज सारा दिन सुनिए रेखा जी के गाने।
2: ओ,

0: रिचार्ज रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास
1: This hour is brought to you by
2: Malabar Gold and Diamonds में सिर्फ 25% advance देकर अपना gold price lock करें. Visit your nearest Malabar Gold and Diamonds showroom now.

आप सभी का फिर से एक और बार स्वागत है। आप सुन रहे हो रेडियो ऑलिव 106.3 FM। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव और यहां पे हम आपको एक चीज याद दिलाना चाहेंगे, वो यही है कि अगर आप अपने ऑफिस टाइम के दौरान मस्ती करना चाहते हैं, फन करना चाहते हैं, बहुत बढ़िया तरीके से हंसना चाहते हैं, गेम्स खेलना चाहते हैं, रिचार्ज और रीएनर्जाइज होना चाहते हैं, तो फिर रजिस्टर कीजिए हैप्पीनेस लॉन्च के लिए। मैसेज कीजिए हमें 3311063 पर HL स्पेस अपने कंपनी का नाम, क्योंकि हैप्पीनेस लॉन्च में हम आपके वर्क प्लेस को विजिट करते हैं, फन करते हैं, गेम्स खेलते हैं, आपको रिचार्ज और रीएनर्जाइज करते हैं। और यही याद दिलाते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

आप सभी का फिर से एक और बार स्वागत है। आप सुन रहे हो रेडियो ऑलिव 106.3 FM। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। और आज यहां से जो है एक चीज आपके साथ में कन्वे करना चाहूंगा, एक्चुअली रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, और वो रिक्वेस्ट यही है कि आप एक संकल्प लीजिए, एक डिसीजन बना लीजिए कि मैं अपने लाइफ में अपने हैप्पीनेस का मालिक हूं। मुझे कैसे हैप्पी होना है वो मैं डिसाइड करूंगा करके। अब वो कैसे हैप्पी हो सकते हैं? देखिए, कभी कभी हमें लगता है कि अगर हम ये चीज़ खरीद ले तो हमें खुशी मिलेगी, वो चीज़ खरीद ले खुशी मिलेगी, फलाना ढंगाना कर ले तो खुशी मिलेगी, यहाँ जाए तो खुशी मिलेगी। मगर कई बार ऐसा होता है, हम रियलाइज़ भी करते हैं कि वो सब करने में खुशी उतनी नहीं मिलती। हाँ, इनिशियली थोड़ा अच्छा लगता है, बट उसके बाद हाँ यही तो है करके एक फीलिंग आती है। तो क्या है मेरी खुशी? मेरी खुशी किस चीज़ में है? मुझे क्या करने में अच्छा लगता है? उस चीज़ को फिगर आउट कीजिए। अगर आप वो आपके करियर से एसोसिएटेड चीज़ है तो उसे और अच्छे से करिए, और वो आपके करियर से अलग चीज़ है तो एक पार्ट टाइम हॉबी की तरह करिए, मगर करिए ज़रूर। क्योंकि जब आप अपने को फुलफिल करने के लिए चीज़ें करते हैं तो आपकी लाइफ की मीनिंग बहुत बढ़िया हो जाती है। और दूसरी बात, दूसरा संकल्प वो ये है कि कई बार ना यार एक टेंडेंसी है हमारी कि हम कंप्लेंट कर देते हैं कि यार ये नहीं किया, ये नहीं हुआ, वो नहीं हो सकता था, ये नहीं हो सकता था करके। तो कोशिश कीजिए कि एक दिन के लिए कि किसी भी चीज़ के बारे में कंप्लेंट नहीं करना। कैसे हम चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं, वैसे कोशिश करते हैं। मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर की तरह साउंड करना नहीं चाहता, मैं बस बेसिकली यही बोलना चाहता हूँ कि जब हम कंप्लेंट करते हैं ना तो हमारी एनर्जी ड्रॉप हो जाती है, और वो एनर्जी जब ड्रॉप होती है तो फिर उसे रिफिल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो कंप्लेंट करना छोड़ना, क्या हम कर सकते हैं उसके बारे में फोकस करना, और जो हम नहीं कर सकते छोड़ना। तो ये एक क्लैरिटी जब हम अपने आप को दे देते हैं ना तो बहुत आसान हो जाती है ज़िंदगी। और ये बात बताते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं, जियो बिंदास।

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव और यहां पे एक बहुत ही बढ़िया ट्रैवलिंग रिलेटेड फैक्ट जो है मैं आपको बताना चाहूंगा। क्या आपको पता है वर्ल्ड की सबसे विजिटेड कंट्री कौन सी है? वर्ल्ड की सबसे विजिटेड कंट्री है फ्रांस, जहां पे 102 मिलियन अराइवल्स जो हैं रिकॉर्ड हुए हैं। और सोच के देखिए कितने ज़्यादा लोग यार फ्रांस में जाते हैं करके, मतलब 102 मिलियन बहुत बहुत ही बड़ी संख्या है। सेकंड नंबर पे है स्पेन, जहां पे 93.8-97 मिलियन अराइवल्स जो हैं रिकॉर्ड किए हैं। थर्ड नंबर पर है यूनाइटेड स्टेट्स, जो 72.4-78.5 मिलियन अराइवल्स जो हैं रिकॉर्ड कर चुका है। फोर्थ पोजिशन में है तुर्की, जहाँ पे 60.5 मिलियन अराइवल्स जो हैं रिकॉर्ड किए गए हैं। और फिफ्थ पोजिशन में इटली और चाइना है, जहाँ पे 57.7-64.9 मिलियन अराइवल्स जो हैं रिकॉर्ड किए गए हैं। और इनमें से कितनी कितनी जगह पे आप गए हैं या फिर आप जाना चाहेंगे मुझे बताइए 3311063 पर मैसेज करके। और यही बोलते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या पर ये बात है।

0: सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM. अपने लव्ड वंस को पैसे भेजना हुआ और भी इजी. कतर में पहली बार अलदार एक्सचेंज लाया है वीजा डायरेक्ट, जिससे पैसे सीधा फैमिली के बैंक अकाउंट में. फास्ट, इजी और रिलायबल. विजिट कीजिए अलदार की 38 ब्रांचेस या डाउनलोड कीजिए अलदार एक्सचेंज ऐप नाउ.
1: थर्ड पार्टी इंश्योरेंस मे बी अ रिक्वायरमेंट, बट विद बीमा यू गेट सो मच मोर. गेट 24/7 रोड साइड असिस्टेंस विद टोइंग, रिकवरी, टायर चेंज, फ्यूल डिलीवरी, बैटरी बूस्ट एंड लॉकआउट सपोर्ट. स्प्लिट योर पेमेंट इनटू 4 इंस्टॉलमेंट्स एंड claim free to enjoy 7% cashback. Plus, get a replacement car for up to 3 days, a one-time airport drop-off and vehicle inspection transportation. Choose Bima, third part of liability today. Call 800-786 or WhatsApp 740-50555 or visit bima.com.qa. Bima for your peace of mind. TNC apply.
0: Olive Recharge Radio Olive 106.3 FM par Jio Bindas.
2: Olive Recharge.
3: This hour is brought to you by
1: Malabar Gold and Diamonds mein sirf 25% advance dekar apna gold price lock karein. Visit your nearest Malabar Gold and Diamonds showroom now.

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव, और यहां पे हम याद दिलाना चाहेंगे आपको कि अगर आपने अभी तक रेडियो ऑलिव के इंस्टाग्राम पेज को फॉलो नहीं किया तो सीधा जाइए इंस्टाग्राम पर radioolive.qa सर्च कीजिए। वहां पे अगर फॉलो बटन दिख रहा है तो फॉलो कीजिए, और फॉलोइंग दिख रहा है तो बहुत बढ़िया। और आप हमारे कॉन्टेंट को चेकआउट कीजिए, पोस्ट को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कॉमेंट कीजिए, हमें सुनते हुए स्टोरी बनाकर डालिए इंस्टाग्राम पे, हमें टैग कीजिए, हम उस स्टोरी को रीशेयर करेंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कई सारे बढ़िया बढ़िया डिजिटल कॉन्टेस्ट जो है हमारे पेज पर आते हैं, आप उसके साथ भी इंटरेक्ट कीजिए, आपको जीतने के मौके मिलेंगे, वो भी बढ़िया बढ़िया गिफ्ट्स। और ये बात बोलते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।
1: बॉलीवुड की जान और उमराव जान, जिसके वजह से बॉलीवुड को हर किसी ने क्लासिक अंदाज में देखा, वो है रेखा।
2: इन आँखों की मस्ती के।
1: आज है रेखा जी का बर्थडे, इसीलिए रेडियो ऑलिव विश करता है उन्हें हैप्पी बर्थडे। आज सारा दिन सुनिए रेखा जी के गाने।

0: भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे आरजे सिमरन के साथ जबरदस्त इवनिंग वो शाम 5 से 9 ओनली ऑन 106.3 रेडियो ओलिव जियो बिंदास
1: आरजे सिमरन के साथ
2: थर्ड पार्टी इंश्योरेंस मे बी अ रिक्वायरमेंट बट विद बीमा यू गेट सो मच मोर गेट 24/7 रोड साइड असिस्टेंस विद टोइंग रिकवरी टायर चेंज फ्यूल डिलीवरी बैटरी बूस्ट एंड लॉकआउट सपोर्ट स्प्लिट योर पेमेंट इनटू 4 इंस्टॉलमेंट्स एंड स्टे क्लेम फ्री टू एंजॉय 7% कैशबैक प्लस गेट अ रिप्लेसमेंट कार फॉर अप टू 3 डेज अ वन टाइम एयरपोर्ट ड्रॉप ऑफ एंड व्हीकल इंस्पेक्शन ट्रांसपोर्टेशन चूज बीमा थर्ड पार्ट ऑफ लायबिलिटी टुडे कॉल 800-786 और व्हाट्सएप 7405055 or visit bima.com.qa Bima for your peace of mind TNC apply
3: Only laga aur ho ja recharge Olive recharge
0: Olive recharge Radio Olive 106.3 FM par Jio Bindas
3: Olive recharge
4: This hour is brought to you by
2: Malabar Gold and Diamonds mein sirf 25% advance dekar apna gold price lock karein Visit your nearest Malabar Gold and Diamonds showroom now.

धीरे टाटा बाबा गुड बाय करके निकलने का वक्त आ चुका है, क्योंकि यहाँ पे 5 बजने वाले हैं और 3 घंटे खत्म हो चुके हैं। मगर जाने से पहले यही दरख्वास्त है आपसे कि अब अपना ख्याल रखना, अपने खास लोगों का ख्याल रखना और हमें जरा दुआओं में याद रखना। फिर मिलेंगे चलते चलते, तब तक के लिए हंसते रहिए, खुश रहिए, खिलखिलाते रहिए और कहते रहिए जियो बिंदास।

सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास। अपने लव्ड वंस को पैसे भेजना हुआ और भी इजी। कतर में पहली बार अलदार एक्सचेंज लाया है वीजा डायरेक्ट, जिससे पैसे सीधा फैमिली के बैंक अकाउंट में। फास्ट, इजी और रिलायबल। विजिट कीजिए अलदार की 38 ब्रांचेस या डाउनलोड कीजिए अलदार एक्सचेंज ऐप नाउ।

0: करना वो जाके अपनी भैंस चराए।
1: हाँ जी मैं कह रही सोनियो की दादी की हाल चाल, हैप्पी सैटरडे। जबरदस्त इवनिंग जो है वो शुरू हो चुका है। और बताओ जी कैसा रहा आपका थर्सडे नाइट, कैसा रहा आपका फ्राइडे नाइट, मतलब इन शॉर्ट कैसा रहा आपका वीकेंड, है ना। और आज के दिन के बारे में भी बता दीजिएगा, स्पेसिफिकली आज के दिन के बारे में पूछ रही हो। कुछ घटित हुआ हो नया, कुछ नया हुआ हो, या फिर कुछ पुराना आपको मिला हो, सब बता सकते हो यार। किसी पे गुस्सा आ रहा है तो भी, किसी पे बहुत ज़रा प्यार आ रहा है तो भी, 3311063 पर, क्योंकि चार घंटे में भी अपने होने वाले हैं तो आपके पास बहुत सारा टाइम है। अच्छे से सोच लीजिए, सोचने में ज़्यादा टाइम मत लगाइएगा। अगर सोचने में टाइम लग रहा है ना तो पहले गुड इवनिंग का मैसेज भेज के निपटा दीजिएगा काम। 3311063 पर।

0: पे मुंडे जाते हैं दिल हार के, लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त, गदर की नंबर वन आरजे
1: आरजे सिमरन के साथ।
2: Zabardast evening, make you drive golden with. Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
3: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop.

0: है ना वो मेरे लिए बहुत ज्यादा खास है। इसलिए है क्योंकि आज है 10 तारीख। देखिए आज रेखा जी का तो हैप्पी वाला बर्थडे है ही, अगले घंटे उनके बारे में बहुत सारी बातें करने वाली हूं, कुछ ऐसे फैक्ट्स आपको बताने वाली हूं जो कि आपको नहीं पता है। लेकिन आज का दिन खास इसलिए भी है क्योंकि आज मेरे भाई का हैप्पी वाला बर्थडे है और मेरे बेस्ट फ्रेंड का भी आज हैप्पी वाला बर्थडे है। सो या सेम डे भी बर्थडे आते हैं। और क्या कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आपके दोस्तों के साथ ही आपकी फैमिली वालों के बर्थ डेट जो है वो मैच कर रहे हैं? सो मेरी दीदी का बर्थडे 7 दिसंबर को होता है, हमारे ग्रुप में भी मेरा एक दोस्त है जिसका बर्थडे भी 7 दिसंबर को आता है। तो कुल मिला के सबके बर्थडे एक दूसरे के साथ मैच करते हैं। और यू नो जब भी 10th अक्टूबर आता है सो मेरे दिमाग में ये टेंशन आ जाती है कि पहले मुझे मेरे भाई के फोटोज डालने हैं, पहले उसको कॉल करना है ताकि उसको लेफ्ट आउट फील ना हो। आई रिमेम्बर वन डे, सो क्या है कि अब मेरा दोस्त तो इधर कतर में ही है ना, तो उसका बर्थडे, तो मैंने उसका पहले फोटो डाल दिया। भाई मेरा भाई रूठ गया मैंने से कि आपने मेरा फोटो पहले नहीं डाला। एक तो सोशल मीडिया की वजह से कलेश बड़े होते हैं यार। सो या और बताओ आप में से कोई है जो आज बर्थडे शेयर कर रहा है रेखा जी के साथ, मेरे भाई के साथ और मेरे बेस्ट फ्रेंड के साथ? सुनते रहिए रेडियो ऑलिव और कहते रहिए जियो बिंदास। आपको मेरी तरफ से हैप्पी बर्थडे है जी, खुश रहो यार।
1: अब सुनिए

करें मौसम की। मौसम आपके साथ मौसम जो है बेहतरीन होते जा रहा है। आज का मिनिमम टेम्परेचर है 29 डिग्री सेल्सियस और मैक्सिमम है 39 डिग्री सेल्सियस। मुझे तो ये नहीं समझ लगती, यू रिमेम्बर जब हम बहुत सारी गर्मी होती है तो हम किसी को बोलते हैं कि चल यार चलते हैं लंच के लिए, चलते हैं बाहर चलते हैं, तो सामने वाला बोलता है यार बाहर तो बहुत गर्मी है यार नहीं चलेंगे।

0: are listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: Cash vouchers on diamond jewelry? Seriously, Mahi?
2: Yes, Bebo.
1: Sirf 25% pay karke gold price lock kar sakti hu?
2: Yes.
1: Catch kya hai?
2: Malabar gold and diamonds ke saath celebrations ko aur bhi khas banao. Diamond aur precious gem jewelry purchases par pao free cash vouchers. Aur sirf 25% pay karke gold rate ko block kar do.
1: I still can't believe it. No catch.
2: Catches sirf matches mein hote hain, Bebo. This is your festive gift from Malabar gold and diamonds.
3: Buying new glasses? Get up to 100% payback offer at Alfala Optics. Find this and more offers on Savify. Visit Savify.co today.
4: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के. लड़की को पसंद है कड़क चाय, मलाई मार के. भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त. कतर की नंबर वन आरजे
5: आरजे सिमरन के साथ
6: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास. जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी.
7: लुलू हाइपरमार्केट्स सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप.

सागर के आसमानों में एक बार फिर से रंग बिरंगे बलून दिखने वाले हैं। होने वाले इसमें इंसान भी बैठ सकते हैं। मैं कह जी सुनियो कि दादी की हाल चाल, सत श्री अकाल, सिमरन कौर है तोड़े नाल। 7th एडिशन कतर बलून फेस्टिवल एक बार फिर से आ रहा है, 10 दिसंबर से लेके 19 दिसंबर तक ये होने वाला है। सो या बहुत जल्दी वेन्यू जो है वो भी अनाउंस हो जाएगा। बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं इसमें, है ना, बलून फेस्टिवल के अलावा नाइट ग्लो होता है, बलून शोज होते हैं, लाइव एंटरटेनमेंट होते हैं, फैमिली फ्रेंडली जोन होते हैं, फूड कियोस्क होते हैं, तो कुल मिला के माहौल जो है वो सही बन जाता है। सो अगर आपको डर नहीं लगता है ऊंचाई से, मुझे लगता है, तो आप तैयार हो जाइए इसके लिए। सुनते रहिए रेडियो ऑलिव, कहते रहिए जियो बिंदास।

Radio Olive 106.3 FM Gio Bendaz. 106.3 Radio Olive Gio Bendaz. अपने लव्ड वंस को पैसे भेजना हुआ और भी इजी. कतर में पहली बार अलदार एक्सचेंज लाया है वीजा डायरेक्ट, जिससे पैसे सीधा फैमिली के बैंक अकाउंट में. फास्ट, इजी और रिलायबल. विजिट कीजिए अलदार की 38 ब्रांचेस या डाउनलोड कीजिए अलदार एक्सचेंज ऐप नाउ. आप सुन रहे हैं रेडियो ऑलिव 106.3 FM जियो बिंदास.

0: सो आज है रेखा जी का हैप्पी वाला बर्थडे। अभी भी उतनी ही खूबसूरत लगती है जितनी 80s में वो लगा करती थी। सो आज उनका हैप्पी वाला बर्थडे, तो उनसे रिलेटेड मैं आपको बहुत सारी बातें बताऊंगी। लेकिन इतनी खूबसूरती के लिए भाई, इस चीज को मेंटेन करने के लिए रेगुलरली जो है वो योगा करते हैं। सो 70s की बात करें, वो थोड़ी सी हैवी थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया। और मतलब अब तो हर कोई, अगर बॉलीवुड में बात करें ना, यू नो की खूबसूरती की, जिन पे एज का असर ही नहीं दिखता, वो रेखा जी होती है। 1986 की बात है, 48 पीसेस उनकी एक्सपेंसिव ज्वेलरी के चोरी हो गए थे, ठीक है। तो जिस चोर को था पकड़ लिया अब वहां पर, और कोर्ट ने बोला कि भाई ये ज्वेलरी जो है वो देनी है हमको, रेखा को। रेखा जी ने 17 साल बाद उनको याद आया और वो गई अपनी ज्वेलरी कलेक्ट करने के लिए। भाई किसी को 17 मिनट 17 दिन, मतलब 48 पीसेस ऑफ ज्वेलरी, एक्सपेंसिव ज्वेलरी, उनको 17 साल बाद याद आई है। भाई साहब अलग लेवल का सीन है इनका। सो अगर बात करें अमिताभ बच्चन एंड रेखा जी की, सबको पता है कि दोनों के बीच में बे इंतहा प्यार था। आज भी अवार्ड्स में जो है वो एक दूसरे को जब फेस करते हैं, उनकी आंखों में ये चीजें जो है वो दिखती है। लेकिन पूरे बॉलीवुड को उन्होंने चौंका दिया था, क्योंकि जब रेखा के साथ उनके सीक्रेट अफेयर का पता लगा था, उसके बाद उनकी फिल्म आई जिसमें वो तीनों थे। हम सबको पता है जय जी और अमिताभ जी एंड रेखा जी, और स्टोरी भी वैसी ही थी जैसी उनकी ओरिजिनल लाइफ में चल रही थी। लास्ट फिल्म थी यू नो दोनों की, अमिताभ जी की और रेखा जी की। सुया और भी बातें बताऊंगी, सुनते रहिए रेडियो ऑलिव को, कहते रहिए जी बिंदास।
1: बॉलीवुड की जान और उमराव जान, जिसके वजह से बॉलीवुड को हर किसी ने क्लासिक अंदाज में देखा, वो है रेखा।
2: इन आँखों की मस्ती के।
1: आज है रेखा जी का बर्थडे, इसीलिए रेडियो ऑलिव विश करता है उन्हें हैप्पी बर्थडे। आज सारा दिन सुनिए रेखा जी के गाने।

0: स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के, लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त, गदर की नंबर वन आरजे
1: आरजे सिमरन के साथ।
2: Zabardast evening, make you drive golden with. Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
3: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop.

0: सो हैप्पी बर्थडे टू यू रेखा जी. जी ने बोला था कि अगर वो उनकी लाइफ में अगर उनका बेटा होता तो वो बिल्कुल ऋतिक रोशन की तरह होता, तो उनका ये ड्रीम एक तरीके से पूरा भी हुआ. कोई मिल गया फिल्म जो कि 2003 में आई थी, उसमें वो ऋतिक रोशन की मदर बनी हुई थी और क्रिश में भी जो थी उनकी यू नो ग्रैंड मदर बनी थी. सो मतलब मेहनत उन्होंने इस यू नो फिल्मी करियर के लिए कितनी सारी की है, क्योंकि उनकी मदर टंग तमिल है, बट उनको जब उन्होंने बॉलीवुड स्टार्ट किया तो उनको एक शब्द भी नहीं आता था हिंदी का. उन्होंने बहुत सारा प्रैक्टिस किया और मतलब हिंदी फिल्में की, और उमराव जॉन के लिए उन्होंने प्रैक्टिस की और मतलब हिंदी फिल्में की, और उमराव जॉन के लिए उन्होंने उर्दू की प्रैक्टिस की. सोया और जब भी हम रेखा जी को स्टेज पे देखते हैं उनकी साड़ियां एक से एक होती हैं, तो उनके पास बहुत बड़ी कलेक्शन है टिश्यू कांजीवरम शिफॉन साड़ीज की, जिसमें ज्यादातर कलर जो है वो गोल्ड है, और नेचर लवर बहुत ही जो है वो उनको बहुत ज्यादा गार्डन में बैठना और प्लांट्स का ध्यान रखना बहुत ज्यादा पसंद है. यार खुश मिजाज है यार. सुनते रहिए रेडियो ऑलिव और कहते रहिए जियो विंदास.
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर.
2: क्या बात है सर, क्या

ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਸੁਣਿਓ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਿਮਰਨ ਕੌਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ आप सुन रहे हो और रेखा जी के बारे में आज हम बात कर रहे हैं क्योंकि आज उनका हैप्पी वाला बर्थडे है। ऐसा बोला गया था कि यू नो एक बार की उनकी शादी विनोद मेहरा के साथ हुई है, फिर उन्होंने एक इंटरव्यू में जो था एक मैगजीन के साथ भी कंफर्म किया कि भाई ऐसा कुछ नहीं है। और सिमी गरेवाल को 2004 में उन्होंने एक टेलीविजन इंटरव्यू में भी कंफर्म किया कि भाई मैं उसके साथ मेरी शादी नहीं हुई, वो मेरा बहुत अच्छा वेल विशर है। लेकिन आपको बताऊं एक सर्च इंजन है जो कि रेखा जी के नाम पे, डोमेन नेम जो है वो रेखा जी के नाम पे, तो आप सर्च कर सकते हैं www.rekha.com। मैंने अभी तक चेक नहीं किया है कि उसमें क्या है, बट यस आप देख सकते हैं। सो जितेंद्र के साथ उन्होंने बहुत रोमांटिकली पेड मूवीज की, 26 के अराउंड रेखा जी ने फिल्में की जिसमें 15 हिट थी यार, कमाल। सुंदरी रेडियो ऑलिव कोर कहते रहिए जी ओ बिंदास।

लेकिन जब वो बिग बॉस के अंदर थी उनका गाने का एक स्टाइल था आए हाय ओके अगर आपने बिग बॉस देखा तो आपको समझेगा। सलमान खान ने भी बड़ा मजाक उड़ाया था और हर जगह पे उनकी मीम्स बन रहे थे, रील्स बन रही थी, उनका मजाक उड़ाया जा रहा था। लेकिन जैसे वो बिग बॉस से बाहर हुई है उनकी कुछ वीडियोस वायरल हो रही है जिसमें वो इतना प्यारा गा रही है, इतना प्यारा गा रही है और लोग बोल रहे बहन इतना अच्छा गाती तो बिग बॉस में गा देती, अभी मजाक क्यों उड़वाया यार। लेकिन वाकई में रीति तिवारी बहुत कमाल का गाती, बट नो आइडिया कि वो बिग बॉस में ऐसा क्यों गा रही थी जिससे उनका मजाक बन रहा था यार। सुनते रहिए रेडियो ऑलिव, कहते रहिए जियो बिंदास।

0: हाँ जी चलो फिर जेंजी का एक वर्ड डिकोड करते हैं।
1: जेंजी डिकोडेड
2: ऐसे ही क्या?
1: दा दा दा।
0: हाँ जी उनको सिंपैथी चाहिए, मतलब दे आर इन टू ट्रबल, वो पेन में है। सो या ये जेंजी वर्ड है OOF, सो इसका फुल फॉर्म है आउट ऑफ फंड्स। नेक्स्ट टाइम जब आपको कोई लिख के भेजे तो आप सर्च करने मत जाइएगा, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है, अब भूलिएगा मत। ठीक है, सुनते रहिए रेडियो ऑलिव गोर, कहते रहिए जियो बिंदास।
3: बॉलीवुड की जान और उमराव जान, जिसके वजह से बॉलीवुड को हर किसी ने क्लासिक अंदाज में देखा, वो है रेखा।
4: इन आँखों की मस्ती के।
3: आज है रेखा जी का बर्थडे, इसीलिए रेडियो ऑलिव विश करता है उन्हें हैप्पी बर्थडे। आज सारा दिन सुनिए रेखा जी के गाने।

0: को पसंद है कड़क चाय मलाई मार्क। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त गदर की नंबर वन आरजे
1: आरजे सिमरन के साथ।
2: Zabardast evening. Make you drive golden with. Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
3: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores where the world comes to shop.

0: करें अगर ग्रीन फ्लैग्स की, तो ऐसे लोग भी ग्रीन फ्लैग्स होते हैं यार।
1: रेडियो ऑलिव पर आरजे सिमरन के साथ।
0: हां जी सिमरन कौर है तोड़े नाल। देखो ऐसे लोग भी ग्रीन फ्लैग होते हैं, सिर्फ मोहब्बत में ये ग्रीन फ्लैग रेड फ्लैग नहीं होता, लेकिन दोस्ती में भी, नॉर्मल अपनी डेली लाइफ में भी, अपने कलीग्स वगैरह से भी अगर आप मिलते हो तो ग्रीन फ्लैग आपको हर जगह अपने आसपास लोग चाहिए। सो एक तरह के लोग ये भी होते हैं कि फॉर एग्जाम्पल आपने कोई स्पेसिफिक खाना खाना है, या फिर किसी स्पेसिफिक जगह पे जाना है, या फिर कोई स्पेसिफिक चीज को चूज करना है, ओके फाइन। सो ऐसे टाइम पे क्या होता है कि जब आपने बोल दिया अरे यार मुझे तो ये खाना है, और सामने वाले को चाहे वो चीज पसंद भी नहीं है या फिर उसका मन भी नहीं कर रहा, सामने वाले ने अगर बोल दी कि हाँ ठीक है यार चल तेरे को पसंद है तो ये मंगा लेते हैं। सो जो आपकी पसंद को प्रायोरिटाइज करके चलते हैं ऐसे लोग बहुत क्यूट होते हैं। तो अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसे इंसान है तो मेक श्योर कि आप उनकी पसंद जान के कभी कभी अपनी पसंद को साइड में रख दिया करो यार, क्योंकि आपको भी तो ग्रीन फ्लैग बनना है ना, आप रेड फ्लैग बन के क्यों सींग मार रहे हो यार। सुनते रहो रेडियो ऑलिव करके तेरो।

और इनका अलग ही चल रहा है यार, ये भी तो ग्रीन फ्लैग है यार। क्योंकि प्यार मतलब अलग है यार इन लोगों का। सो रिसेंटली रश्मिका ने बोला कि वो विजय देवरकोंडा को दिन में 10 से 15 बार आई लव यू बोलती है। सो मुझे लगता है कि ना प्यार का स्पार्क जो है ना वो बना रहना चाहिए, कि आप किससे कितना प्यार करते हैं बताते रहना चाहिए। नॉर्मल प्यार आप किससे कितना प्यार करते हैं बताते रहना चाहिए। नॉर्मल प्यार, सिर्फ प्यार ये अपने पार्टनर के साथ ही नहीं, आप अपने दोस्तों से बताइए यार, बताइए कभी कि प्यार करते हैं, जितनी बार आपका मन करे बताइए। क्रीप साउंड होता है लेकिन इमोशंस को एक्सप्रेस करना जो है ना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हाउ क्यूट यार, सबसे प्यारी चीज ही होती है जब आपको कोई सामने वाला ये बताता है कि वो आपसे प्यार करता है यार। तो आप भी बोलो आज किसी को कॉल करके। सुनते रहो रेडियो ओलिव कोर, कहते रहो जियो विद अस।

0: ਬੇਬੀ ਕੋ ਬੇਸ ਪਸੰਦ ਹੈ।
1: ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸੁਣਿਓ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ। सिमरन कौर आपके साथ। पहले प्यार की बात करें, बहुत सारे लोगों को इंसानों की याद आती है। नहीं नहीं, पहला प्यार जो है ना वो आपका होता है, आपका काम। फॉर एग्जांपल, मैं म्यूजिक और माइक वाली बंदी हूँ, ये मेरा पहला प्यार है, राइट। सो अगर मैं लाइफ में आगे जाके कुछ और काम भी करती हूँ, लेकिन मेरा इसके लिए, म्यूजिक और माइक के लिए, स्टूडियो के लिए, रेडियो के लिए मेरा प्यार ऐसे ही रहेगा, फिर चाहे आप जो मर्जी कर लो। सो इसी तरह से गुलबनाग की बात करें, वो एक्ट्रेस तो है, बहुत ही कमाल की एक्टिंग भी करती है, लेकिन शायद आप में से बहुत सारे लोगों को नहीं पता वो एक पायलट है। जी हाँ, उनके पास लाइसेंस है। सो रिसेंटली वो चर्चा में आई है, उन्होंने 10 साल बाद अपना पायलट का लाइसेंस जो है वो रिन्यू किया है। क्या बात है यार, मैंने बहुत सारी पिक्चर्स भी देखी थी गुलबनाग की, जिसमें वो पायलट वाली ड्रेस पहन के प्लेन उड़ा रही रहती है। यार सही है, काफी कूल है यार। तो उनका पहला प्यार है प्लेन उड़ाना। सुनते रहिए रेडियो ऑलिव कोर, कहते रहिए जियो बिंदास। आपका पहला प्यार क्या है जिससे आप कभी दूर नहीं जा सकते हो यार, बताओ। 3311106।

0: सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM. टफ काम और भी आसान कार्मल ग्रुप लाया है शैंटोई के व्हील लोडर्स एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले विजिट कार्मल ग्रुप नाउ
1: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे
2: आरजे सिमरन के साथ
3: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी
4: लुलू हाइपरमार्केट्स सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप

गाने आप लोगों के लिए चल रहे हैं, लेकिन अभी एक नंबर तो आप हो यार। चलो अब अपना नाम बुलवाने के लिए रेडी हो जाओ। आवाज आपके इशारों पे नाचेगी, लेकिन कंडीशंस अप्लाई हैं। सिमरन कौर आपके साथ है जबरदस्त इवनिंग्स में। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका नाम अभी के अभी रेडियो पे बोल दूं, तो आप अभी के अभी अपना नाम मुझे लिख के व्हाट्सएप कर दीजिएगा। मेरा व्हाट्सएप का नंबर मैं आपको बता देती हूँ, 3311063 जी, 3311063। इस नंबर पे सिर्फ और सिर्फ अपना नाम लिख के भेजिए। रमन, थैंक यू सो। ओ भाई, आज मेरे भाई का बर्थडे भी, और हमारे लिसनर का नाम है रमन, और उसका नाम भी रमन ही है यार। सो रहमान जी, थैंक यू सो मच। सुशील जी, थैंक यू सो मच। तीरज जी, थैंक यू सो मच। रियाज जी, थैंक यू सो मच। फारूक जी, थैंक यू सो मच। सूर्या जी, थैंक यू सो मच। राहुल जी, थैंक यू सो मच। रजदा जी, थैंक यू सो मच। फरहाना जी, थैंक यू सो मच। संधु जी, रहमत जी, थैंक यू सो मच। हबीब जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सिर्फ और सिर्फ दोस्त नाम लिखना है 3311063, क्योंकि ये नेम गेम है। विलियम जी, थैंक यू सो मच। सिद्धार्थ जी, बहुत बहुत शुक्रिया। उमेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अफजल जी, थैंक यू सो मच। फारूकी, ऑलरेडी शायद मैं आपका नाम ले चुकी हूँ। अब समझ जी, थैंक यू सो मच। अरिजीत जी, थैंक यू सो मच। सुश जी, थैंक यू सो मच। शबी जी, थैंक यू सो मच। आमिर जी, थैंक यू सो मच। जैनब जी, थैंक यू सो मच। जया जी, थैंक यू सो मच। एंड दैट्स इट फॉर नाउ। जया जी का मैसेज आया आज, आज रेखा जी का बर्थडे है तो इनका मैसेज आया है, हैप्पी बर्थडे लिखना था। जया जी आपको, क्या बात कर रही हो। जोक्स अपार्ट, सो अभी के लिए जो है, जिन जिन लोगों के मैंने नाम ले लिए आपने सुन लिए, अब थैंक यू लिखो और अपना फेवरेट वाला इमोजी बनाना मत भूलिएगा।

0: स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के, लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त, कतर की नंबर वन आरजे
1: आरजे सिमरन के साथ।
2: Zabardast evening, make you drive golden with. Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
3: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop. Just

0: सिमरन कौर के यहाँ से गलती माने का टाइम आ चुका है। अपने दिमाग में खोल के रखे हैं इनको बंद कर दोगे, एकदम सारी क्लोज ऑल कर दो, ठीक है। सो बस उतना ही है कि खाते पीते रहो, ऐश कर दे रहो, चेहरे पे वाली स्माइल रखो, किसी का दिल मत दुखाना। बी नाइस टू एवरीवन यार, गुड नाइट, जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड लव यू सो किलो।
1: Radio Olive Bar. Fresh, fresh, fresh, fresh, fresh. Ye gana fresh. Fresh song of the hour.

0: लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है
1: इन एसोसिएशन विद नेस्टो हाइपरमार्केट, नाउ ओपन एट ऑल पास

Malta's number one radio station. Radio Olive, 106.3 FM. Gio Bindas.

भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे सिमरन के साथ जबरदस्त इवनिंग रोज शाम 5 से 9 ओनली ऑन 106.3 रेडियो ऑलिव जियो बिंदास।